खनाइतनैरां सेपनिता खुबखु बेलाय खनायततोक डीआई मनि रिजाप मंगसं खना लायखा रीता देवर मनि खरांगो तबुकजों हाबलायनाय दादाक्षिदाक तिरिनि शालकामा पान्दाव नरक नासिं लाइजाक खावान सुगु बुफुरु सालकामनि पान्दा सक पाइनो बा फाइनो आमतिहाय होनै नरक नासिङै दंखना होनै खाव जंगु खोनाजनाय रांसालनि दाखु बुखु नरक जतन गोरोङै मान्नाय दिनैनि सालकामनि पान्दाव पैलावनो जों सायमानलायानो दिनैनि सालकामा पान्दानि कक प्रथमा जों बैसागु साग्रुप काहानखि मुंसासो बेमार ओंखाहांखि ओंगेखेबा चिनी नगो मानथकमानि जे बिथिबोराय आबरकनो जों चिनी बैसागनि गाहामनि बागै एबा बिथि ख्लायै जों बगलायो ओंगेखेबा जालायो ओंलायखेबा ओंगेखेबा जों आबनो हकुसु सिनलायो आमतेहाय गोबां मा बेसेबनि जों चिनी बैसागनि हामग्रायनि बागै ओंगेखेबा रबन मानि साग्रुप मानि साग्रेब मानि इंगेखेबा कियर मानि इंगेखेबा गोबां मा गोसा रगनि आमतेहाय गोबां मा बिथि खलै ओंगेखेबा रमदि जों गोसा रग जाखा होनगे जिनि थै थाग्रोनानि बागै गोसानि थै थाग्रोनानि बागै जों दाम दाम रग सामु दाम दाम ब्लाय बिथिबाय जों आबनो मोथाक आबो हायरगसिनि जिनि दफानि बिसिङो बेलेखेनो नांगुक मानि कायसा बिथि बखलनै होनजागौ रांसाखनि दाखु बुखु बिथि बखलनि बिसिङो कायसा बेलाय नांगुकमानि एबा बेलाय बुमुं गोनां दे बेलाय आबो सामुंगो नांगुगो आबंखा जवान सोनामानि बिथि जों सायमानो जवान जिनि आराग सोनामथानि ओंगेखेबा बुतुक सोनामथानि गुबुननि बसंनि आराग रगनि स्लाय फानो जिनि बिथिनि जिनि बसंगो जे मानथकमानि बिथि बाय सिनामजाखनि मानो जवान बाय सिनामजाक जे आराग ओंखेबा जे बुतुक ओंखेबा गरा ओंखेबा रमदि आबौ चुवाक वासुं आमते हेर' गोबांमा जों जिनि बैसागनि सामुंगो थेपाव आबोनो आराग सिनामथानिबो बेलायनो नांगौगौ ओंखेबा बुतुक सोनामथानि गरा सोनामथानि आबु गोरै हेनखे जिनि मुंसा फानोसे जौग्या आबुनि बागै जुवान सोनाममानि बिथि अबनि बुमुं रगनो जों गिसा सायमानलायानो जे सोग जरातै सायमानलायसाक नरक जत्न गोरोङै मानो ककटुकनि बिसिंतै दिनैनि संसारजाक पान्दाव दङ आं आरो जे उषा आं बाय दादाक सिदा गोरोंनानि बागै ककटुक नाम्बार 2326253 हायनोहाय गिदिंगि साफिरानो 232253 रांसारनि दाखुबखौ जवान सोनाममानि बिथि जवान सोनाममानि बिथि जों बाहाय बाहायखि जवान सोनाम जों आराग सोनामथानि बुतुक सोनामथानि गरा सोनामथानि आरोथ' जवान नांगौनो स्पेसियेलि जेफ्रु जों जिनि आराग सोनामनानि बुतुक सोनामनानि आफ्रु हंखे जवानथ' नांसुगुनो आबो गोरै हिंखायथ' ओंगियानो आबोनो गारिबो जों जवानो बो बो सामुंगो थेपा रमदि जिनि बैसाग दुखुमान मानि ओंगेखेबा रबन मानि बबो हायजागाव जों गोबां कुक जवान न' जों थेलाय बा जवान न' जों सामुंगो थेपा आबोनो रोगै दै जवान सोनाममानि बिथि आबो हायरकनो रोगै जों दादाक सिदा ककटुको गोरोंनाय दिनैनि संसारजाक पान्दाव नरक जतनो कबकनाय ककटुको गोरोंनायनि बागै ककटुक नाम्बार 232253 हायनो हायगिदिंगि साफिरानो 232253 रांसाखनि दाखुबखु नरक जतनो कबकनाय नरक दादाक सिदा गोरोंगै मानो गोरोंनायनि बागै ककटुक नाम्बार 232253 ककटुक सपायजाक फायदि गोरोंगैनायानो साबु दं

0: एप्रुभेल खायजों सार्टिफिकेट बो रोनानि नांनाय
1: अ जुलाइ दाननि साल नैजिनै सालमारिनि सिबि त्रिपुरा हास्थेनि सिरि सिथिनि रोगजा खारचि देर संसार जागोन होनै ककथुमतै हुकुमु दागिखौनि बखाखदै कक मुंखांसाव साख्लाय जाखा आसुक जरा जों खोनालायखा ककथुमर' दाबो खोनालायानो नकपार्टिबारनि ककथुमा आगुलि बिरखुं हालादै गानागिनि आमसाइनि नकपार्टिबारनि ककथुमाव साख्लाय जाखा नखा चुमै गोनां दावनाय फेरां ककै वातै फाइ बानो मानो तुंकुकमानि मारिउ तुंसामारिउ नुकजागोनो 32 डिग्रि सेलसियास दै तुंख्लाय मारिउ 26 डिग्रि सेलसियास नबारो दै हकुनि मारि साखाव नुकजागोनो चुकुचिदक पार्सेन्ट दै खामाव नुकजागोनो चुकुचिब्रै पार्सेन्ट हजाकमंग साग्लाय जाखा सिपाहीजला वेस्ट डिस्ट्रिक गुमती तै साउथ डिस्ट्रिक्टनि गोबांमा आमचाय आमचाय रगो वातै गोबांखे फाइ मानो तै फेरां ककै वातै फाइ फानो मानो होनै हजाक दंनायनि बागै कक मुंखांसाव गोजार जाखा
0: फायदों गाथों दाबो खोनानो हालायानो सेबागाव बर' दलामानिखौ बुरा नाथ जों खोनालायानो अबंखा गभर्नमेन्ट डिग्री कलेज त्रिपुरा अबनि बेखाखदै कम्पिउटार प्रग्रामार को काम एटेन्डेन्ट हस्टेल सुइपार दाय सुइपार रगनि बागै आरो बुक्स आसुथाय दङ काय जिब्रै आबनि बागै रोंमा रोंना नांनाय रोंदेमसार पास खालायजाग हायाखाबा रोंदेमसारनि सिमिं सेंगै बिइ बिटेक पास खालायजाग पर्यन्त अ कयलायो जमा रैमानना आबनि बागै उमरुना नांनाय नखा बेसि सिसारनि सिमिं नखा बेसि ब्रिजनि बिसिंग खातिजाग रगनि बागै अमर किसासक हलिरमुं तंगानो आबनि बागै अनलाइन तै कयलायरनि बायथाक सालमारि रोजाखा अजलाय दालिन साल नैथिनै सालमारिनि बिसिंग अभायख्लायन कर्परेट सेक्टरनि बेखाखदै किसासक बुक्सा आसुथायन सुफुंना बागै कयलाय आसा जागै दङ आसुखानि मुंखा मेनेजमेन्ट ट्रेनि दाय जुनियर एसिस्टेन्ट आबनि बागै बुक्सा आसुथाय दङ काय सारा ब्रेजिचार रोंमारि नांनाय बि ए बि कम बि एस सि BCA, BE, BTEC, Abahayo, graduate, hekaba degree pass khlaijak. Abani bagai omorna nangnai nokha bisi jichane simi nokha bisi thamchine ni bisingo. Khate jagrakni bagai omor kisasak holer mung tongana. Abani bagai koilerin ni paithak salmari re jakha o julai talina sal nichibrei salmari ni bisingo. Asuzara जों खोनालायखा सेबग बर' दलामानिखौ दाबो रोजाबमुं खोनालायानो रोजाबमुंग खरंर'आनो बिकास राय देबबर्मा

0: आकै नङ आबनु सामुङ्गो माथ्या बनाय अबो जतनि सिलाई कतरको कक राङसक्ति दाखु बुखु हाइनो हाइ गरङै नायनो ककदुखु स्वागत हेलो
1: हेलो
0: हेलो फुङ्काहाम दाखु
1: फुङ्काहाम
0: बेलायनो बुखुक जोंखाना
1: द
0: ए ए पुइला फुरु खरां र मिमाया आंगै दंला दसादि गोबां मा कक दुगो गोरोंखा फिया दाबुक न' फैला नों दाबनाय बुरि बुखौनि बिसिंगौ नोंनो फैला हेंके बुरि रगत' तेबो गाहामखै सायमानाव हायादे बाना बबन रोखै गोदै ओंनाय बबन रोखै गोखांनाय आबो हायर' दसादे आच्छा बुखौनि नोंबो मुंखिसा सागानि द' मान्दाय देवचरणनि सयाति
1: आच्छा मान्दाय देवचरणनि सयाति

0: tangbutang ni samung berai naika berai naipro bini logi tongbaikha agotola ali naikrai ni mayor dipok mozumdar corporator ratna dotto pura commissioner saju wahida kosong montrokra professor dr manik saha saka haste hapang police bahini rokno taibo katalkuk gurung tangse projak tai lukurok ni kissing snamna ni thak yawi samung tangui tango mia arke nagar ni a chandra ramarao tsr फुरंगमा थायो फिल सोकोसी नै बेस्ने कताल सितोकजाक पुलिस कन्स्टेबल रोक्ने पासिङ आउट पेरेड नि मेलो अ कक शाखा मन्त्री अक्र शाखा तङ्क सङ्लुकु रोक्ने नक ब्रुमब्रुम दाक्ति नताई नाङमा नि छ विचार तुनै र नान हारे कताल फुसदारी क्यारोङ रोक्न त्यही हास्ते जत पुलिस रोक्न रेम बाई रेम खेप फुरङजा गैदङ्गो मिशन आगमन नि बिसिङतै भारत नि पुइला हाफाङ फातार नि स्नामजाक रकेट विक्रम वान काहाम क्रेङखे गुरी लामो थाङ सगैखा अन्ध्र प्रदेश नि श्रीहरिकोटा टङनाय सतीश धवन नखालुङ थाइने मियादी परदामची नै तामै सती बाव नखायुङ फाइसिङ कक्षा जाखा अ सामुङनि बिसिङतै भारत हाफाङ फातारनि याक्तै नखायुङ गुरी लामो आचग्रै मानस्लाब रनाय हायुङनि उल्थाम हाकतर हुनै गसिमुङ मानखा मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी अ सामुङ काहामनि बागै स्काई रोड एयर स्पेस न हाम्बाइ याफारखा तालबुरि मथाकजाक तङमा उल अ हाटिनि सिमी सेङफिर खा नेसनल ओल्ड एज पेन्सन स्किम सेपमानै रोक्ने ब्याङ्क एकाउन्ट भातानि रां हाबमुङ मिया हदा हामख्राइतै हदनुङ नाइखुनि तांख्रा तपन कुमार दास अ हाथी व तालनैनि मानथाइ रां सेपमानै रोक्ने ब्याङ्क एकाउन्ट रहरजाक खा हुनै साखा ताइब मानथाइ तङमानि रां उल रहरजागोन बसाखा किसासेक जोंजाल तङमा बागै बाटा याफार थानि केबेंमुङ नुगजाखा बसाखा हास्ते बेबागै खरकसा रासाय ब्रिसि ब्रिसाय चाक्रा रक नेसनेल ओल्ड एज पेन्सन मानै तङबायो आगरतलानि हाउरे मार्केट आमचाय हायरन्टा याबा टेब्लेट फाल्मानि ककसिल साजाक सुमन दासन सालथां त्रिपुरानि आलायदा एनडिपिएस दरबानक बिसिसारनि बागै सामुं तांग्रै आलंक सपनानि दागिमुं रोखा मिया दरबार फां आशुतोष पाण्डे अ कक सरमुं रोखा फिफा हायंका फुटबलनि बाटाइमुंग इंलेण्ड फिल्ड थामनि थायमानखा मिया हर मायामियाव संसाजाक थुमुंग इंलेण्ड गोल कायद कायब्रेनि फेरबाय फ्रान्स न मेचेनै अ थाइमानखा इंलेण्डनि बुकाव साका हेट्रिक खालायखा गुबुननिबो खाक फ्रान्सनि किलियन एम्बापे गोल कायनै रै अ बाटाइमुंनि बेबागै गोल कायसिरै जत्तनि कुसु गतंगु गोल कायसार रै फिल नैनि थायो यतंगु आर्जेन्टिनानि लियोनेल मेसि तिनि हरनि दामचि नै तामै सति थामचि अ फाइनेल आर्जेन्टिना बा स्पेन थांलायाना नबर टेबारनि सिगांबारिया ककमुग साजाखा तिनि नखा सुमै तंगान हास्टेनि किसासोक आमचय फेरांखगै गोबां वातै फाइमान तिनि तुंमारि साखो 32 डिग्री सेल्सियासनि गानांगिनि तंगैमान मिया साखानि तुंमारि तंखा 32.4 डिग्री सेल्सियास ताइ तिनि फुंग खामानि तुंमारि तंखा 26.2 डिग्री सेल्सियास ककतमा परिमुङ ताबुक जराती अर्ग नपाइखा उलनि ककबरक बाइ ककतमा आय अंगान तिनि सान्जना दामस्नि तामै सति ब्रिसि बाव
1: আকাশবাণী আগরতলা শুরু হচ্ছে অভিজ্ঞাপন।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा?

नरकनाई तो वहाँ पे मुझे तो 101.6 मेगाहर्ट्ज़ तो तेरे जरा तो उन्हें रुक गए जिकाश्मी आओ ये मारे किसी सॉन्ग सिंग अब आखिर नो खनादा तो कुछ रुचा मुंग तांशा जादू नी रुचा मुंग एम को वह हाथ चुक नी रुचा मुंग पांडा ओ सिंग जादू नी रुचा मुंग तांशा खनाई पहले क्या के सिंग असुख जरा खना मनी ताको कशुबु दे बर्मानी खरंग भाई फिर सिंग ताबुक हाई ना हाई दे तांशा खनादा तो रुचा मुंग खना लाया ना बुकुक बुद्ध लक्ष्मी दे बर्मानी खरंग भाई जरा वहाई ना हाई सिंग जादू नी रुचा मुंग खना लाई ने फिर नाइन दी आगे नि जरा रो हंगे सी एफ एम रो जेफुरु चेंगे को आ जरा सन दीपर दाम चीनी बुफुरु कानो अब हाई जतन ना सिंगी तो बारटा जरा बुफुरु कानो पगर पांडा बुफुरु चेंग फिया दाबे नरंगी बगे जरा सन खाना लाए दाती नो बेला खेने प्ले खाई जा फिया बाब जिन बस सालो ताम ताम पांडा तो अब तो नरक बी सालाइने खाना तो लगी तो

0: सानै खोल पाइन अनि ककटाङ रन पाइका
1: के बिन ककटाङ म बेलै के ब साथी पन खाना तका बेलै के खाना तका नि ककटाङ मुङटा मुका म
0: सखबाई
1: लुबो हिंकाय खा हामनो बेलै के हामै मारि व बिनि ककटाङ साइ खाना न बगे नि ककटाङ मुङकाय सखा बाइ लुबो ना हंके न सखा हामा साइ जमान सखा हंगाय सिनि बरक द फारक आगि नि सिमना सों खतंग सनाम बै रि ताक लाइ मानि बुजिखा आ सखा वन सों खतंग सनाम ब

0: आसिक जरा खनाबाई क्या सरायरोग ने पांडा बकरे बदल ते ब्रोग ने कामिंग का चाचू पारा ते ओ पांडा नो कॉम थिंग ने इनका शालिम दे बर्मा आकस्बनी आगर तला अबुने लोगी हन्यो हाय अबुने यागलो तब खनाबाई खानीमारी पांडा खानीमारी पांडा वो खनाबाई शुक्राम दे बर्मा ने खरंग बाई रिसाप्सक रिसा मुंगरोग देव पांडानो कम थिंग नेंका उषा देवबर्मा
1: रंगदोकनी लाइबुमाव केबु केबुनि छाय लायि थांमाया जतनो जानि जे जाबाय गुरुं केबु बाय केबुनो सुजावि माया केबुनि खेबा बेलाय खरां खनातो केबुनि खे ककथाय खनातो केबुनि केबुनि खायबा रागिनि बेलाय खनातो आं ता मुखायने आं साख साखनो सायमेया बुनि ककनि बजर या सिरखै याक मनगु याकुं रखाय याकुंगो काओ हुनमाहाय जतु रिजा मुंग्रुं रकनि बेबाग रिजा मुनन खनानानि मुचुंगु तै नरकनो खानिमारिनि बिसिंति याफारना मुचुंगु फिया ता मुखायनाय जरानि हाबबो यागुल खिलिबो बोले यागुल सुलांगिया आबुनि बागैनो जतुनि सिलाय खनातो खनातो रिजा मुनन नरकनि थानि तुबुइ फायख्या तिनि इ साजलां तांब्लां जराओ ताखु सुकुराम देवबर्मानि रिजाब मुं बिनि ककथाय बिसिखै गथखा फायदि नायलायानो गाति खामानि मुइबालि फांगो तक्सा जनि जं पुंगु बिसिकिफिलि फायमानि सिउ कुंकिला कुह पुंगु बिसिकु तालनि नगबार मान्तिरि खुमुं बुसिनिया बारु बरकनो नुगुइ आनि बखाबो ताबुलि उदिला जाओ

0: Work from home, high salary, শুধু একটাই ক্লিকে, আরে বাস।
1: অন্য ফাঁদে।
2: অচেনা অজানা লিংকে কখনো ক্লিক করবেন না। RBI এ কথা বলে।
3: জেনে রাখুন, সতর্ক থাকুন।
4: PM জয়, अब गरीबों की जाय बन गई है।
5: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
6: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा।
1: हम बुजुर्ग पहले जब बीमार पड़ते थे तो सबसे बड़ी तकलीफ होती थी अपनों पर बोझ बन जाने की। खर्चों की फिक्र से अपनी बीमारी ही छुपा लेते थे। लगता था ऐसे ही चलेगा, पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने की हमारी चिंता और हमें भी दी आयुष्मान की गारंटी, आयुष्मान वह वंदना कार्ड से। आज 70 साल और उससे अधिक आयु के हम जैसे सभी वरिष्ठ नागरिक हैं 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के हकदार।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें, घर बैठे आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की। सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। और खेलों में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच आज रात होने वाले फीफा विश्व कप के फाइनल को लेकर विश्व भर में फुटबॉल का जुनून। लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को जीत के लिए 388 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। सत्र से पहले सरकार ने आज संसदीय सौध भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्यसभा के नेता जगत प्रकाश नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉ एल मुरुगन बैठक में उपस्थित थे। अपना दल पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल, जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा, तेलुगु देशम पार्टी के नेता लावू श्री कृष्ण देवरायालू, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और 40 राजनीतिक दलों के 50 नेता भी बैठक में शामिल हुए। बैठक शुरू होने के तुरंत बाद विपक्षी दलों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI की बैठक में उपस्थिति के विरोध में प्रतीकात्मक रूप से बैठक का बहिष्कार किया। हालांकि विरोध प्रकट करने के बाद विपक्षी सदस्य बैठक में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा करने का आग्रह किया।
1: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे
0: संवाददाताओं से बातचीत में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, JMM, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सहित सभी विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार किया।
2: आज पूरे विपक्ष सभी पार्टियों ने विरोध के तौर पे सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया क्योंकि NCPI मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है। इन कथित 20 बागी सांसदों के विलय को सभापति की मंजूरी नहीं मिली तो किस आधार पे संसदीय कार्य मंत्री ने इन 20 बागी सांसदों को आमंत्रित किया? इसके खिलाफ हमने विरोध दर्ज कर बैठक से वॉकआउट किया।
0: NCPI के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने सर्वदलीय बैठक का विरोध करने पर विपक्षी दलों की

0: नड्डा की। उन्होंने कहा कि एनडीए में एनसीपीआई अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
1: कभी नहीं देखा ऑल पार्टी लीडर्स मीटिंग में वॉकआउट होता है। मैंने भी डिमांड दिया जो पार्टी का जहां पोजीशन हो दो एंड हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन दे हैड टू बी गिवन चांस एंड गवर्नमेंट शुड आल्सो फील टू रन द हाउस इज देयर रिस्पांसिबिलिटी बट इन आवर हाउस इट हैज बिकम रेगुलर प्रैक्टिस टू डिस्टर्ब द हाउस एंड नॉट अलाउ द हाउस टू रन।
0: आज की सर्वदलीय बैठक से सरकार को उम्मीद है कि सभी राजनीतिक दल संसद की कार्यवाही के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र से पहले आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने सत्र में उठाए जाने वाले विधायी और अन्य मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। बैठक को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने रचनात्मक चर्चा, सार्थक सहयोग और संसदीय परंपराओं के उच्च मानदंडों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली में किसी भी विरोध प्रदर्शन या जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है और न ही दी गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 क्षेत्र में लागू है, इसलिए जंतर मंतर के अलावा इस क्षेत्र में विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि वांगचुक को जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती कराने के सरकार के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा ने कहा है कि वांगचुक को किसी निजी अस्पताल में भेजने की तत्काल आदेश देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रखे हुए हैं और उनकी सहमति से ही इलाज जा रहा है। न्यायालय में वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगो की उस याचिका पर सुनवाई हो रही थी जिसमें वांगचुक को निजी अस्पताल में भेजने की मांग की गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार, सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली पुलिस से इस मामले में 3 दिन में जवाब देने का नोटिस जारी किया है। श्री वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल के 21वें दिन कल पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर रवाना हुई। ये यात्रा व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, शिक्षा तथा जन से जन संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तार देते हुए इन तीनों देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रोमानिया और मोल्दोवा में भारत के राजदूत डॉक्टर मनोज कुमार महापात्रा ने राष्ट्रपति की पूर्वी यूरोपीय देशों की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने से आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी।
2: It is the first ever visit by any Indian president to Moldova.
3: यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली यात्रा है। इसी तरह रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से अधिक के बाद होगी, तो इस महत्व को देखते हुए यह ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बड़े नेताओं के साथ हम अपने मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान करेंगे। माननीय राष्ट्रपति के साथ एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी है। इसी तरह माननीय राष्ट्रपति रोमानिया और मोल्दोवा में उनकी संसद का दौरा करेंगे, जिससे हमें संसदीय संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
2: We should help us strengthen the parliamentary relationship.
0: सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस परियोजना का विकास कर रहा है। इसकी कुल लागत 8000 करोड़ रुपए से अधिक है। यह राजमार्ग खुर्दा, पुरी, केंद्रपाड़ा और जगत सिंहपुर जिलों से होकर गुजरेगा। इसे सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों के बीच बेहतर और सुगम संपर्क स्थापित होगा। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए भी नए अवसर लेकर आएगी। राजमार्ग के किनारे होटल, होम स्टे, रेस्तरां, हस्तशिल्प बाजार और पर्यटन से जुड़े अन्य कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। यह राजमार्ग 9 आर्थिक केंद्रों और 5 लॉजिस्टिक केंद्रों को भी जोड़ेगा, जिससे ओडिशा का आर्थिक नेटवर्क और मजबूत होगा। समर्थ के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

0: के अंतर्गत परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 12 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत 70 हाइड्रोजन चालित भारी वाहनों को तैनात किया जाएगा और 16 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन द्वारा इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये पायलट परियोजनाएं देश भर के कई रणनीतिक मार्गों को कवर करते हुए भारत के राजमार्गों और शहरी परिवहन गलियारों में शून्य कार्बन उत्सर्जन गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उन 41 रेस्तरां के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है जिन्होंने उपभोक्ताओं से अनधिकृत सेवा प्रभार वसूल किए हैं। इस बारे में प्राधिकरण को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के जरिए शिकायत मिली थी। केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्राधिकरण ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे अनधिकृत सेवा शुल्क न लगाएं। श्री जोशी ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 के जरिए ऐसे मामलों की सूचना दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में आज सुबह से ही मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग लापता हैं। सबसे अधिक हताहत और नुकसान पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील में हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा गुमशुदा लोगों की तलाश की जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और सहायता पहुंचाएं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली यात्रा बीच में ही छोड़कर आज दोपहर बाद जम्मू वापस चले गए। नागालैंड के मोन जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में 9 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, राजस्थान, विदर्भ और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के तूफान का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीकी सेना ने आज ईरान पर हवाई हमले किए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन हमलों में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाया गया। फुटबॉल के सबसे भव्य मंच फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक फाइनल के लिए तैयार है, जहां आज रात 12:30 बजे न्यूजर्सी में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आमने सामने होंगी।
1: अर्जेंटीना फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे सफल टीमों में से एक है जिसने 3 बार विश्व कप जीता है। लियोनेल मेसी की टीम 1958 और 1962 में ब्राजील के बाद फीफा विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर स्पेनिश टीम 2010 के बाद अपना दूसरा फीफा विश्व कप खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी। अर्जेंटीना को सबसे अधिक उम्मीदें अपने स्टार खिलाड़ी मेसी से हैं, जो 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और गोल्डन के प्रबल दावेदार है। लोटारो मार्टिनेज ने 3 गोल और एंजो फर्नांडीज ने 2 गोल करके अर्जेंटीना के आक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिकेल ओयर्ज़बल इस विश्व कप में स्पेन के लिए 5 गोल के साथ शीर्ष स्कोरर हैं। रॉड्री ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 648 पास पूरे करके मिडफील्ड में शानदार खेल दिखाया है। दुनिया भर के खेल प्रेमी इस रोमांचक मैच के लिए बेहद उत्साहित है। भारत में भी इस फाइनल मैच के लिए कई तैयारियां की गई है। मेघालय, मणिपुर और केरलम जैसे राज्यों ने देर रात होने वाले इस मैच को देखते हुए सोमवार को स्कूल और कॉलेजों में अवकाश घोषित किया है। राजधानी दिल्ली में भी रेस्तरां, कैफे और अन्य कई प्रतिष्ठान सुबह 4 बजे तक खुले रहेंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंग्लैंड ने भारत को लंदन के लॉर्ड्स में तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मैच में 388 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में बिना विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक आयोजित की।

सभी राजनीतिक दलों से संसद की कार्यवाही का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। सरकार पर्यटन और आध्यात्मिक यात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए ओडिशा के तटीय इलाके में 160 किलोमीटर से अधिक लंबे रामेश्वर पारादीप राजमार्ग का विकास करेगी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में मूसलाधार वर्षा के कारण हुए भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। नागालैंड में तेज बारिश से अचानक आई बाढ़ में 9 लोग मारे गए। अमेरिका ने जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के जवाब में ईरान के अर्धसैनिक बल इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।